ओ कबाड़ा ले की बना हूँ। सीढ़ी सीढ़ी की वो नहीं रोई रोई की ईजा आड़िया बिकमी था ही इदा सीढ़ी सीढ़ी की इथोनी नहीं दियोगा की इदा सीढ़ी सीढ़ी की हा ना जाने नहीं दियोगा की जाबुनी हा ना जा उखाने।